समाचार विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य कला संस्कृति पर्यटन विकास कला दी जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: 快快，出来给我把你拿的。
1: 他妈的！比加，比斯雷斯，曼努仁真，萨希杰拉，卡拉。संस्कृति पर्यटन र विकास का लागि जनपक्षीय आवाज हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।

0: नेपाल को नया आवाज हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज
1: भाई जी ऊ देखाओ तिहारे चल
2: प्यार से दे रहे हैं, रख लो।
1: देख अरे और ये बाप रे बाप, स्टाइल तो ब्लास्टिंग मारे लू हो। दो चार भी लिखवा ले बुका। अरे रे ए, ए।
2: आ जिगर पलट।

समाचार विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य कला संस्कृति पर्यटन विकास कला की जन पक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।